0: करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
0: मध्य प्रदेश से आप हमसे जुड़े हैं, तो मध्य प्रदेश में आप कहाँ रहते हैं?
1: जी हम तो मैहर में रहते हैं।
0: मैहर में तो कैसा है वहाँ का मौसम, कैसा है वातावरण, कैसा है?
1: जी मैम तो बारिश तो मौसम है तो बारिश हो रहा है मैम, हल्का फुल्का।
0: जी
1: बारिश चालू है मैम।
0: तो आपके घर के आसपास हरियाली है, आप गांव में रहते हैं शहर में रहते हैं?
1: गांव में रहते हैं मैम।
0: तो फिर तो हरियाली आसपास जरूर होगी, है ना?
1: जी जी जी बहुत हरियाली है मैम।
0: जी उस हरियाली का ध्यान भी रखते हैं?
1: जी जी जी मैम।
0: तो मौसम आपके घर के आसपास का हरियाली पूर्ण वातावरण है आपका, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, सुहाता होगा, है ना?
1: जी जी जी मैम।
0: जी तो अपने आसपास साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं आप?
1: जी बहुत साफ सफाई का ध्यान देते हैं मैम, कैसा कोई नाले जाम हो गए तो उसको नाले का पूरा पानी जाने देने का नहीं, फिर पानी जमा होएगा तो गंदगी फैलेगा मैम, तो आदमी बीमार होएगा, मच्छर भी जमा होएंगे, तो इसके लिए साफ सफाई का बहुत ध्यान देते हैं मैम।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ नालियों से घर के पानी के जाने की व्यवस्था है, तो उस जगह पर हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो नालियाँ हैं वो साफ रहें, उसमें किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, कोई कूड़ा करकट पॉलीथीन उसमें ना अटक जाए जिससे वो अवरोध ना हो, है ना?
1: जी,
0: और
1: जी,
0: इसका
1: जी,
0: ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जानते हैं हम सभी कि मौसम में बदलाव हो रहा है, बारिश का मौसम आने वाला है। ये एक तरफ हमें बहुत अच्छा भी लगता है लेकिन बहुत सारी कई बार परेशानियां भी हमारे लिए लेकर आता है, कहीं पानी रुक जाता है, नाली रुक जाती है, रास्ते जाम हो जाते हैं, तो उनके लिए हमें व्यवस्था स्वयं ही बनानी पड़ती है ना? हमारा घर है, हमारे आस पास का वातावरण है, हमारा समाज है। जी तो आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हैं?
1: जी जी जी, जी
0: तो सुनील जी बताइए, आज आपने हमें फोन लगाया, गीत कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म जुरवा से कोई सा भी सुनवा दीजिएगा मैम, बहुत अच्छे अच्छे उसमें गाना है।
0: जी तो आप गीत के बोल बता दीजिए कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: गीत के बोल है जुरवा, फिल्म है जुरवा और गाने के बोल है क्या तन तना तन तन नो, ऐसा गाने के बोल है मैम।
0: चलिए आपकी पसंद पर ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, फोन करने के लिए।

0: हेलो
1: जी बस
0: जी, कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में?
1: जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बोल रहा हूँ। आदरणीय मैडम जी और नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। राम राम, कैसी हैं आप
0: जी?
1: मैम?
0: बिल्कुल अशोक जी, हम बहुत अच्छे हैं। आप बताइए कैसे हैं? और आपको भी
1: मैं भी
0: नमस्ते,
1: ठीक
0: राम
1: हूँ।
0: राम
1: मौसम सुहाना है, बारिश तो नहीं हो रही मगर बादल हैं छाए हुए
0: जी।
1: और ठंडा मौसम है
0: जी
1: जी।
0: तो आपने कहा कि बारिश अभी नहीं हो रही, लेकिन बारिश आने जरूर वाली है क्योंकि ऋतु बदल गई है, मौसम बदल गया है, और ऐसे में
1: जी,
0: बारिश तो जरूर होगी, है
1: तो
0: ना?
1: गर्मी का मजा लिया तो बारिश का भी लेना है, ठंडी का भी, शहर मौसम का मजा लेना चाहिए। जी
0: जी बिल्कुल, लेकिन बारिश के मौसम का मजा लेने के साथ, आनंद लेने के साथ, हमें बारिश के मौसम की कुछ तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। आपने कर ली हैं?
1: करनी तैयारियां है, साफ सफाई रखते हैं, नाले वगैरह जो भी है चौक है उनको सही करके रखना चाहिए,
0: जी
1: कूलरों का पानी भी साफ करके रखना चाहिए, मच्छर अच्छर पड़ते हैं जिससे ग्रामीण रोग पैदा होता है। और
0: जी
1: हमें जरूरी है पेड़ भी लगाना है,
0: जी बिल्कुल,
1: आम
0: क्योंकि
1: वगैरह
0: अगर
1: तो खाते हैं उसके जरिए पेड़ भी लगाएंगे, उसकी देखभाल भी करनी है।
0: हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये अपने आसपास की हरियाली को बढ़ाने का एक अच्छा मौसम होता है जिसमें हमें पेड़ पौधों की बहुत देखभाल नहीं करनी पड़ती। यानी अगर हमने बीज लगा दिया है, बारिश की मौसम में जमीन नम रहती है ना, तो ऐसे में पौधों को पानी अपने आप से मिल जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बारिश आने से पहले, जो आजकल के दिन है, इसमें हमें पौधे और लगा देने चाहिए, है ना?
1: जी, पौधे लगाना चाहिए, उनको लगाना नहीं उनकी देखभाल भी करनी है,
0: जी बिल्कुल, देखभाल
1: बड़ा
0: तो
1: भी करना है जैसे
0: हाँ जी हाँ
1: बच्चों
0: जी
1: की
0: हाँ जी
1: देखभाल करते हैं।
0: जी और एक बात आपने और भी बहुत अच्छी कही कि हमें अपने आसपास पानी को जमा होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे मच्छर मक्खी जो छोटे कीट हैं वो बढ़ जाते हैं और फिर वो हमारे लिए ही परेशानी का कारण बनते हैं, है ना?
1: जी मैडम जी।
0: हाँ जी, तो अशोक जी, आज आपने कार्यक्रम में फोन लगाया, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है आई मिलन की रात,
0: जी
1: सावन का महीना आया है घटा से बरसा है पानी रे माइया, ये वाला अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: चलिए, आपकी पसंद का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के
1: बहुत
0: लिए
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: दिल से धन्यवाद
0: जी।
1: मेरे।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: जी, कौन से श्रोता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हमारे साथी बने हैं?
1: नमस्ते दीदी, प्रणाम। मैं कृपया साझा छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता बोल रही। तो
0: जी, राम स्वरूप गुप्ता जी, कैसे हैं आप?
1: बड़ी दीदी आप लोग,
0: आप छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं, कैसा है छत्तीसगढ़ का मौसम?
1: मौसम तो बड़ी दीदी हर 3 रोजों का पानी भी है, सुबह से लेकर शाम तक आज 3 रोजों का पानी भी है। हाँ
0: जी, तो बरसात हो रही है?
1: दीदी बरसात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आपके आसपास हरियाली है? शहर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप?
1: मैं वहाँ देहात है, पंचायत शहर है,
0: जी
1: इतना देहात भी नहीं, इतना शहर भी नहीं हो।
0: जी तो यानी आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं, वहाँ तो और भी अधिक हरियाली होती होगी, है ना
1: हाँ दीदी, हाँ हाँ
0: जी? तो हरा भरा मौसम बहुत अच्छा लगता है, और बारिश के दिनों में तो और खूबसूरत।
1: दीदी,
0: तो
1: हाँ
0: आज हम कार्यक्रम में विषय पर बात कर रहे हैं कि हमें अपने आसपास अपनी साफ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: हाँ दीदी, साफ रहने से साफ ठीक रहेगा, उसमें क्या है यानी बीमारियां दूर रहेगा, उसमें गंदगी नहीं रहेगी उसमें।
0: जी
1: हाँ, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, खान पान भी अच्छा रहेगा, साफ सफाई में।
0: जी बिल्कुल, हमें अपने आसपास की साफ सफाई के साथ साथ, अपनी साफ सफाई के साथ साथ, अपने वातावरण पर्यावरण की साफ सफाई के साथ साथ हमें खास ख्याल रखना चाहिए अपने खाने पीने की चीज़ों का, है ना?
1: हाँ
0: क्योंकि अगर हम
1: दीदी,
0: शुद्ध जल लेते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। अगर हमारा खान पान अच्छा होता है, साफ होता है, संतुलित होता है, तो भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना?
1: अच्छा रहता है उसमें।
0: जी बिल्कुल। तो राम स्वरूप जी, आज आपने कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हमें फोन लगाया, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज दीदी ऐसी बात है, 1969 का आवाज जो लता जीत पुलिस गुलजार संगीत बसंत देसाई, और
0: जी
1: जीते धीरे धीरे बरसे सावनी अस्थियां।
0: चलिए, आपकी पसंद पर आशीर्वाद फिल्म का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद
1: नमस्ते दीदी,
0: जी।
1: प्रणाम।

0: अनमोल है।
1: इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
2: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
1: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
2: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
1: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मोहन नगर कुरुक्षेत्र
2: 8708903436। हेलो।
3: हाँ जी
2: जी, कौन से श्रोता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में जुड़े हैं?
3: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
2: जी योगेश जांगड़े जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है, अच्छा है।
2: और छत्तीसगढ़ का मौसम आपके यहाँ कैसा है?
3: अभी तो 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रहा है।
2: जी तो फिर बारिश के मौसम में परेशानी हो रही है या आपको अच्छा
3: लग रहा है? बहुत बारिश हुआ है
2: जी, तो कैसा लग रहा है आपको? बारिश हो रही है, परेशानी लग रही है या फिर अच्छा लग रहा है मौसम बदलता हुआ?
3: जब नहीं गिर रहा था तो बारिश नहीं होने का मतलब परेशान थे
2: जी,
3: और अब गिरने लग गए हैं तो ऐसे हो गए हैं कि घर से नहीं निकल पा रहे हैं, खेती बाड़ी काम नहीं कर पा रहे हैं।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये मौसम जरूरी बहुत है ना, धरती में जो पानी का,
3: हर मौसम का एक महत्व है।
2: जी बिल्कुल,
3: और वो उस समय ना हो तो फिर दुखदायी होता है।
2: हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कई जगह तो ऐसा है कि अभी बारिश नहीं पहुंची है, पानी की कमी हो रही है ना, ऐसे में जो भूमि का जल स्तर है वो गिर जाता है, और भूमि के इसी जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए, फिर से भरने के लिए भगवान ने हमें ये बरसात का मौसम दिया है। लेकिन हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं ना, रिचार्ज नहीं होता है, बहुत जगह बरसात का पानी बर्बाद जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी बहुत ज्यादा नहीं होती है ना।
3: जी
2: तो लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अपने आसपास सफाई की व्यवस्था की, ताकि हमारा स्वास्थ्य बना रहे, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
3: बिल्कुल, स्वास्थ्य सबसे बड़ा मतलब हमारा धन है, और बदलते मौसम में बारिश में सब तरह से हमको ख्याल रखना है, आसपास गंदगी ना हो, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो सबको सुरक्षित रहना जरूरी है।
2: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, गंदगी से निजात मिलनी चाहिए, ताकि हमारा जो ये आसपास का वातावरण है ये स्वच्छ रहे और हमारे स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित ना करे, है ना। तो योगेश जी, आज आपने फोन लगाया, गीत कौन सा सुनना चाहते हैं?
3: फिल्म है नमक हलाल और गीत के बोल है, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो।
2: चलिए आपकी पसंद पर नमक हलाल फिल्म का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
3: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: हाँ हेलो जी।
0: हेलो
1: हाँ हेलो जी।
0: जी, कौन से श्रोता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़े? जी, रामबीर जी किरमिट से, कुरुक्षेत्र से आपने हमें फोन लगाया है। कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक दीदी, और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: जी
1: जो रात का प्रोग्राम है वो रात
0: हाँ जी हाँ जी, तो रात के कार्यक्रम सुन पाते हैं आप?
1: को तो मिल गया जी दीदी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका फोन लग गया तो कैसा लग रहा है आपको फोन लगाकर?
1: हाँ दीदी, देखिए अपने काफी स्पष्ट है कि लोग अक्सर आपको फोन में लगे और हमारा नाम भी लीजिए,
0: जी
1: तो ये एक वास्तविक गाँव है और गांव के बच्चे ही अपने ये चंद्रमान जी को है और मक्खीराम जी हैं और ये प्रजापति जी हैं अपने जी, तो
0: जी
1: काफी दोस्त रहते हैं प्रोग्राम।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर कार्यक्रम सुनते रहते हैं, आपको ज्ञानवर्धन होता रहता है, मनोरंजन होता रहता है ना। तो आज कार्यक्रम में हम बात करें अपने आसपास सफाई की, आप इस पर कुछ कहना
1: हाँ
0: चाहेंगे?
1: जी, जो प्रसाद का मौसम है जिसमें हमें अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर देखते हैं कि कहीं खाली टायर साइकिल का कभी भी अक्सर उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, हमें
0: जी
1: आसपास या छत पर नहीं रखना चाहिए उसको, क्योंकि उसमें मच्छर पैदा होंगे और बीमारियां पैदा होंगी।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: हाँ जी हाँ जी, और अक्सर जो सरकार भी है या आंगनबाड़ी सेल करता है वो ज्यादा समझाते रहते हैं जी।
0: जी बिल्कुल, जागरूकता के बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी बातें की जाती हैं, और इसी तरह से हम भी अपने श्रोताओं को जागरूक कर रहे हैं कि बरसात का मौसम, बारिश का मौसम आने वाला है। इसके लिए जो सावधानियां हमें अपने आसपास, अपने खुद के दिनचर्या में या फिर अपने वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, उसके लिए एक मौसम में बदलाव के समय पर तैयारी करना बहुत ज़रूरी है ना? और उसके लिए
1: बिल्कुल
0: जागरूक
1: जी, हमें
0: होना
1: अपने लिए ही करना है और अपना स्वास्थ्य ध्यान हमें
0: जी
1: खुद रखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, रामबीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस बातचीत के बाद अब बताइए कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी देखिए, फिल्म का नाम मेरे याद नहीं है लेकिन ये गाना है कि तुझको जाना नहीं तुम कहीं हार के कांटों पे चलते बिना के साए बाहर।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही संजीदा गीत आपने चुना कार्यक्रम में, और ये फिल्म इम्तिहान से गीत है, और आपको आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा रहे हैं। फ़ोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं संविधान के अनुच्छेद 41, 21, 14 और 39 ए के महत्व की। भाई श्रोताओं, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि हमें अपने जीवन में क्या कर्तव्य है, हमें करने चाहिए, निभाने चाहिए या क्या हमारे अधिकार हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और भारतीय संविधान का यही जो है प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, देश के क्या कानून हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो श्रोताओं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद देश के कल्याणकारी स्वरूप कानूनी समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक आर्थिक न्याय की नींव है। और अगर हम बात करें संविधान के आर्टिकल 14 की, तो ये हमें बताता है कि हम सभी जो हैं वो कानून के समक्ष समान हैं, और कानून के समक्ष समानता ही आर्टिकल 14 का उद्देश्य है। श्रोताओं, यह एक मौलिक अधिकार है, यह भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और कानूनों के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की गारंटी देता है। इसका अर्थ है कि जब भी कोई भी व्यक्ति भारत में कानून से ऊपर नहीं है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी राज्य को के नागरिक के साथ किसी तरह के भेदभाव को रोकता है आर्टिकल 14। और आर्टिकल 21 के बारे में हम आपको जानकारी दें तो यह हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को दर्शाता है। श्रोताओं, यह किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय जब तक कि इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया स्थापित न की गई हो। इसमें गरिमापूर्ण जीवन, निजता, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। आर्टिकल 39 क और 41 के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन से श्रोता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हैं, अपना परिचय दे दीजिए।
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, कौन से श्रोता कार्यक्रम में जुड़े हैं?
1: मैं रोशन लाल प्रजापति गो सिरसला से।
0: जी रोशन लाल जी, आपने हमें फोन लगाया, कार्यक्रम में पहली बार फोन लगाया आपने?
1: नहीं, मैं 27 अप्रैल को लगाया था जी।
0: अच्छा जी, 27 अप्रैल के बाद आज आप जुलाई में फोन लगा रही हैं?
1: हाँ, बस आज लगाया जी, फिर मैं सुनता रहता हूँ मैडम जी, पता क्या है, मैं चलो और भी भाई कोई लगा ले।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है।
1: करके ना भी और कभी किसी का नंबर पड़ जाए फिर क्या फायदा जी, भाई जल्दी जल्दी प्रोग्राम तो सुने ही जावा।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो रोशन लाल जी, इस समय क्या कर रहे थे आप?
1: बस मैं इस टाइम मिट्टी बना रहा था जी।
0: अच्छा जी, अच्छा
1: मिट्टी के बर्तन बनाऊं जी मैं।
0: अच्छा, आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं?
1: हाँ जी। तो आज बड़ी कमाई जी मैडम जी आज
0: तो आपका काम कैसा चल रहा है इस समय?
1: बस ठीक है जी, अपना गुजारा हो रहा है जी बढ़िया।
0: हाँ,
1: अब दुवाली दूड़ी का दीवे दुवे बनाऊंगा।
0: हाँ जी,
1: करवे कुरवे से बनाने शुरू करूंगा, मिट्टी बनानी शुरू कर दी।
0: अच्छा जी, तो इसके लिए इतनी समय, देखिए अभी अभी तो दिवाली आने में कुछ समय है, तो इस समय पहले तक तैयारी आरंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है?
1: ऐसा ना मैडम जी, पता क्या टाइम लगा बर्तन बनाने सकाने, अब कम से कम एक महीना तो मिट्टी बनाने में ही लग जाएगा।
0: अच्छा जी, इतना समय लग जाता है मिट्टी बनाने
1: भी है, रंगते भी है, पेंट भी करना, फिर एक महीने पहले तो फिर बन गई नहीं, बस अपना बेचने पूछने का ही चला फिर।
0: जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और आज तो आपने बता दिया कि मिट्टी को तैयार करने में इतना समय लगता है, फिर आपको वो बनाना और उन्हें सुखाना।
1: एक महीना लग जाए जी मैडम जी, एक महीने से पहले नहीं मिट्टी बनती।
0: अच्छा जी, तो कैसे बनाते हैं मिट्टी को?
1: बस मिट्टी पहले तो कूटते हैं।
0: हाँ जी।
1: फिर छलनी से छानते हैं
0: जी,
1: दो बार छानी जाती है, फिर उसमें रेत छान के, जो आटा छलने वाली छलनी होती है उससे रेत छान के वो मिलाते हैं उसमें
0: जी,
1: हाथ के साथ, फिर ऐसे जैसे आटा नहीं बनाते हैं रोटी पकाने के लिए, ऐसे बनानी पड़ती है
0: जी।
1: हाँ,
0: तो ये तो आज आपने पूरा हमें विस्तार से बता दिया कि इतनी मेहनत लगती है, जो हम ये घर में पानी पीने का मटका लेते हैं या फिर दिए लेते हैं दीपावली पर, और उस मेहनत को जरूरत भी है कि एक पहचान भी मिले, और बहुत अच्छे से हमारे देश में हमारे जो देश के लोग हैं वो अपनी स्वदेशी इन चीजों को अपनाएं और खरीदें, है ना? हाँ जी, तो इस कार्यक्रम की तैयारी जब आप कर रहे होते हैं, ये मिट्टी बनाना और अपना काम करना, उसके साथ साथ कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: हाँ जी, बस रेडियो पे चलता ही रहा जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा भी लगा।
1: हाँ, रेडियो तो बस मैं सवेरे 6 बजे पहले समय चाह रहा हूँ, उससे लगा दियो जी।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: बस चलता ही रहा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: गीत जाने मन फिल्म का है जी।
0: जी,
1: की गल है कोई नहीं।
0: चलिए आपके पसंद पर ये गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में हमारे
1: जा रहे हैं। देवानंद की है जी ये।
0: हाँ जी, फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है।

0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे थे भारत के संविधान के आर्टिकलों के बारे में, और आइए अब आपको जानकारी देते हैं आर्टिकल 39A के बारे में, जो कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता के बारे में है। श्रोताओं, यह नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSP का हिस्सा है, इसे यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसे नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। इसे वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके महत्व की बात करें तो ये सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित न रखा जाए। इसके लिए राज्य सभी के लिए न्याय सुलभ कराने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है, यही कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 39A। श्रोताओं, अब बात करें आर्टिकल 41 की, तो ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, और यह भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSP का एक प्रमुख अनुच्छेद है। श्रोताओं, ये राज्य को निर्देश देता है कि वे अपनी आर्थिक अक्षमता और आर्थिक क्षमता और विकास के भीतर लोगों को काम करने के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या विकलांगता जैसी स्थितियों में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करें। ये भारत को एक समाजवादी और कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। तो श्रोताओं, भारत के संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जिनकी सहायता लेकर हम अपने जीवन को सुलभ बना सकते हैं। जिन कानूनों का अगर हमें जानकारी हो तो हम अपने जीवन को बचाव कर सकते हैं, सुलभ बना सकते हैं, और इनकी जानकारी हर आमजन को होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम अपने श्रोताओं को ये जानकारी देने के लिए लेकर आए थे, और आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अब ये संदेश।
1: नहीं, जिंदगी फिर चलेगी। अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
0: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
0: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436। श्रोताओं, अब चलते चलते आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की। श्रोताओं, ये भारत सरकार द्वारा सभी धर्मों के अल्पसंख्यकों जिनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन के कल्याण के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का समान लाभ और अवसर प्रदान करना है। श्रोताओं, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो शैक्षणिक अवसरों में वृद्धि यानी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक कम मेंस यानी योग्यता के सह साधन और स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना है। इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए नया सवेरा, पढ़ो प्रदेश जैसी अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं जिनमें सहायता प्राप्त कर शिक्षा के अवसरों को प्राप्त किया जा सकता है। श्रोताओं, आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के अंतर्गत रियायती दरों पर अनेक लोन भी प्राप्त किए जाते हैं ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के लोग स्वरोजगार और व्यवसाय को शुरू कर सकें। श्रोताओं, इसके अंतर्गत कौशल विकास का भी प्रावधान है ताकि कौशल विकास को प्राप्त कर ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने जीवन, अपने रोजगार को सुलभ बनाया जा सके। और बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत अगर बात करें तो हॉस्टल, स्कूल, डिग्री कॉलेज, कौशल केंद्र, अस्पताल और पेयजल जैसी अनेक बुनियादी सुविधाएं भी प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और इन सब के लिए अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15% लक्ष्य और परिव्यय निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे समुचित प्रतिनिधित्व सरकारी योजनाओं में पहल हो सके और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री के इन 15 सूत्रीय कार्यक्रम को विकास किया जाता है। तो श्रोताओं, इसी सब के साथ अब आज के कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र को संपन्न करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बतलाइएगा। हमारा पता है आपकी बात akashvani@gmail.com। दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। दिन के 11 बजे जाते हैं, अब आप सुनिएगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
1: छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शिव आराधना। इस एल्बम से आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में ये भजन, जिसे लिखा महेंद्र दहलवी ने और दिलीप सेन समीर सेन का संगीत इसमें आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

साथ साथ फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: राजकुमार रिजवी की आवाज में आप सुन रहे थे उर्दू गजल मॉडर्न। इस एल्बम से ये गजल, जिसे लिखा ताहिर फराज रामपुरी ने और बेनी का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुना

0: बजने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक के साथ साथियों की आवाजें बीवी नंबर वन फिल्म के इस गीत में सुखविंदर सिंह के बोल और उन्हीं का संगीत भी इस गीत में। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

सोनू निगम की आवाज़ में फैज अनवर के बोल आप सुन रहे थे। साजिद वाजिद का संगीत दीवाना एल्बम के इस गीत में और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं शंकर महादेवन को ब्रेथलेस में।

शंकर महादेवन की आवाज में ब्रेथलेस एल्बम से आपने ये ब्रेथलेस गीत सुना। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर महादेवन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब सुनिए ये गीत।

0: कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे चालबाज फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: गणेश हेगड़े की आवाज़ में आप सुन रहे थे उन्हीं के एल्बम का ये गीत, जिसे मनोज संतोषी ने लिखा और गणेश हेगड़े ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आपको याद दिला दें कि शाम 4 सेहतनामा के अंतर्गत सुन सकते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। फिलहाल कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत।

दर्दी रब रब इस एल्बम से आपने सुना दलेर मेहंदी को। जंगा नंदपुरी ने इसे लिखा और जवाहर वट्टल का संगीत इस गीत में आपने सुना। बस दो मिनट, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये प्रहसन है जिसे आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन मदन बिहारी का, माफ कीजिएगा, लेखन मदन बिहारी शरणदीप का, निर्देशन श्याम सुंदर प्रसाद का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस समय रंग तरंग। और आपको ये भी बता दें कि रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता परीक्षित साहनी पर, ये आप सुन सकते हैं। और अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत।

सपने फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई और मलसिया वासुदेवन की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और

0: 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज़ में दीदार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और आप समझ गए होंगे यादों की महफिल कार्यक्रम में याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन के मौके पर।

0: का संकेत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन पर।

0: चल
1: मैं क्या सोचती,
0: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हाल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के। चल जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक।

पवित्र पापी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, प्रेम धवन के बोल और उन्हीं का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और आज हम अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उन्हीं की फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में आप सुन रहे थे एमजी हशमत के बोल। रविंद्र जैन का संगीत तपस्या फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें अब सुनवा रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों से गीत। आइए सुनते हैं वंदना फिल्म का ये अगला गीत, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की।

असद भोपाली की रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, रवि का संगीत वंदना फिल्म के इस गीत में। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में अनोखी रात फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल, रोशन का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें हम याद कर रहे थे जन्मदिन पर अभिनेता परीक्षित साहनी को। कार्यक्रम के इस भाग में याद करते हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि पर।
3: हर तरफ अब

हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और अब हम याद कर रहे हैं पुण्यतिथि पर निर्देशक चेतन आनंद को।

किशोर कुमार की आवाज़ में कुदरत फिल्म से गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज में ही रांझा फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, जिसमें अब हम याद कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं की फिल्मों के गीतों से।

मोहम्मद रफ़ी, भूपिंदर, मन्ना डे और तलत महमूद की आवाज़ों में हकीकत फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आज़मी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में समय हम याद कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं की फिल्मों के गीत से। आइए अब कार्यक्रम में अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, हंसते जख्म फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ें, कैफी आज़मी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

नहीं पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत

हस्ते जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत, और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं रोजाना हम एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उसी में छिपे होते हैं वो शब्द जिनसे कार्यक्रम में गीत शामिल होते हैं, जिनसे संबंधित जो भी गीत होते हैं वही हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और उस टेक्स्ट या इबारत को पढ़कर आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत शामिल होंगे। और आप अपनी बातें भी हम तक पहुँचाते हैं कमेंट्स के जरिए। तो हमारे जो भी श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बता दें www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप ये हमारा पेज पा सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी पोस्ट मिल जाएंगी और भी जो भी कार्यक्रम आते हैं विविध भारती की उन सभी की पोस्ट भी आपको वहाँ मिलती है और कार्यक्रम का विवरण भी आपको वहाँ मिल जाएगा झरोखा के अंतर्गत। तो इस तरह से आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। और जो साथी फेसबुक पर ही हैं जिनका अकाउंट है वो फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी में लिखा यानी हिंदी में लिखा हुआ है और आपको मिल जाएगा ये पेज। और अभी हम आपको बता देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की इबारत क्या है। तो आज की इबारत है चलते चलते इस जीवन में कई रास्ते खुलते जाते हैं, चलते हुए हम किसी से दूर भी होते हैं और किसी के पास भी खींचे जाते हैं। हमारे पांव की सुंदरता भी तो चलते जाने में है क्योंकि रुकना नहीं चलना ही नियति है। अगर हम रुक जाएं या अगर हम रुके तो ये समय ही चला जाएगा, वक्त जो ये गया हाथ से फिर कहाँ कोई इसे पाएगा। दो चार कदम आप चले और कुछ हम भी चलकर पहुंचे आप तक। देखिए चलते चलते आपकी और हमारी मुलाकात हो गई इस सुरीले मोड़ पर। तो ये है आज की इबारत जिनसे शब्द आप चुन सकते हैं जिनसे आज के कार्यक्रम में गीत शामिल होंगे। अब देखते हैं कि आपकी गीतों की लिस्ट और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मैच करती है। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि आज की इबारत पढ़कर शिव मंगल सिंह सुमन की कविता की पंक्तियां याद आ गई। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दूर दूर खड़ा, जब आज मेरे सामने है इतना रास्ता पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। वैसे तो मैं हर रोज शाम को चलने जाता हूँ लेकिन आज सुबह बाय कार सूरत से धोरा जी की उठ चल पड़ा हूँ। चलते चलते मेरे नहीं सुमन जी के गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना, ऐसा हमारे साथी का कहना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई चलना तो वाकई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलना जो सांकेतिक रूप में है वो जीवन चलने का नाम जैसे गीतों में हमें समझ में आता ही है, लेकिन पहली बार किसी को चलना सिखाना यानी किसी बच्चे को जब हम चलना सिखाते हैं तो बड़ा ही प्यारा सा लगता है ये काम। और जब वो चलना सीख जाता है तो वो रुकता ही नहीं है, बहुत देर तक तो सिर्फ चलता ही रहता है। तो आपने क्या किया है ऐसा प्यारा काम, किसी छोटे बच्चे को चलना सिखाया है या आपको किसने चलना सिखाया, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और कार्यक्रम में चलते हैं पहले गीत की ओर। बताना है किस फिल्म का गीत है।

0: जीवन का ये रोहतक केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाश है। अब आप सुकेती से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज अंबाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर मुखर्जी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके राष्ट्रवाद, अखंड भारत और जन सेवा के विचारों को याद किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन देश की एकता, विचारधारा और राष्ट्र हित के लिए समर्पित रहा। उनकी जयंती पर यह कार्यक्रम उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर उन्होंने गत 12 वर्षों में हरियाणा और देश के अन्य भागों में हुए विकास की भी चर्चा की।
2: आज विकसित भारत में और बढ़ने में विकसित हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लगभग 1300 किलोमीटर की नेशनल हाईवे 12 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर बनी है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 800 मेगावाट का तीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो यमुनानगर में 8469 करोड़ रुपए की लागत से बना है, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरती को डेडिकेट किया है। उसी तरीके से रेवाड़ी बाईपास लगभग 1070 करोड़ रुपए की लागत से बना करके आपको समर्पित किया।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह अवसर राष्ट्र की चेतना, विचार और संवेदना को नमन करने का महापर्व है।
3: आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को सम्मान करने यहाँ एकत्र आए हैं जो केवल

0: बनने वाले साइंस सेंटर का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा तथा शहीदी स्मारक में उनकी भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित जींद रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जींद में प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे और एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी भी उपस्थित रहेंगी। हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने प्रदेशवासियों से डेंगू की रोकथाम में सक्रिय भागीदारी निभाने की भी अपील की है। पलवल के उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने आज जिला के सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वे पूरे जुलाई माह को डेंगू रोको माह के रूप में मनाएं और अपने घरों व आसपास के क्षेत्र को मच्छरों से मुक्त रखने के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाएं। उन्होंने कहा कि वे घरों में ऐसा कबाड़ न रखें जिसमें पानी जमा हो। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के उपचार के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: ठहरने में नहीं बल्कि लगातार चलते रहने में ही है। जो रुक गए हम तो ये कीमती वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा जो फिर कभी लौट कर नहीं आता। कुछ कदम आप चले, कुछ दूरी हमने तय की और इस तरह हमारी मुलाकात हो गई। हमारी कौर साथी का कहना है, चलते रहना नियति है और गुजरा वक्त अक्सर दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। जीवन का कटु और शाश्वत सत्य गतिशीलता ही है। इसे कर्मयोग, काल निरंतरता और पुरुषार्थ के रूप में गहराई से समझे जाने की जरूरत है। दूसरे गहन अर्थ में जीवन बहती नदियों सा या किसी चक्र जैसा है। जैसा कि इन दोनों से यही ज्ञान मिल रहा है कि निरंतर गतिशील रहने में ही उनका अस्तित्व बरकरार रहता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा मन करता है कि कुछ देर के लिए ठहर जाए। क्या ऐसी कोई जगह या कोई ऐसा समय आपके जीवन में आया, हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया जिसमें आपको लगा कि भाई इनके साथ कुछ देर ठहर जाना चाहिए। तो आप हमें बताइए कि रुकने का मन कब किया आपका। और साथ ही हम नहीं रुक रहे हैं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि किसकी आवाज में गीत, कौन से फिल्म से।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और हमारे साथी कहते हैं कि गीत ही जीवन का आधार है, माफ़ कीजिएगा गति ही जीवन का आधार है, ठहराव तो बस एक हार है, संघर्षों से ही निखरता इस जीवन का श्रृंगार है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कदम बढ़ाते रहते हैं, इतिहास वही रचते हैं जो लहरों से टकराते रहते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चलना ही जीवन का दूसरा नाम है, अब जब आपके कदम सही दिशा में उठते हैं तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपकी निरंतर मेहनत और सही दिशा उसे सच कर देती है। सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप रुकने के बजाय कितनी लगन से अपने रास्तों पर आगे बढ़ते गए। हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, उसने कहा दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें, मंजिलें प्यार की होगी तय चलते चलते, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रही ये जिंदगी, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सफर में चलते ही तो जाना है, जीवन का नाम ही चलना है, जहाँ रुके वहीं सांसें रुक जाएंगी, हंसते मुस्कुराते जीवन के सुख दुख को भी चलते रहेंगे तो जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये गीत इन्होंने लिखा। और साथ ही बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे। एक और साथी लिखती हैं कि सचमुच जीवन आज फिर एक बार आपके साथ चलने का भाग्य मिल गया, सचमुच जीवन में हर घड़ी चलते रहने का बड़ा महत्व है, निरंतर चलते रहने से हर मुश्किलें और असफलता का डटकर सामना करने का दृढ़ मनोबल पाते हैं, नई संभावनाओं को अपनाकर पुरानी बातें छोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसी अर्थ का एक सुंदर मराठी कविता याद आ रही है, कायदा पाड़ा गतीचा काल मागे लागला, थांबला तो संपला, धावत्याला शक्ति यही आणी रस्ता साफ पड़े। आज की भारत बहुत प्रेरणादायी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये मार्गदर्शक संदेश दे रही है। हम तो अपने साथी से कहेंगे कि जो भी वो दूसरी भाषा में लिखकर भेजते हैं कुछ कविताएं, तो उसका अर्थ भी जरूर लिख दें ताकि सभी को पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लेकिन एक और बात हमारे साथियों ने कहा कि चलते चलते सफलता मिलती है, चलते चलते रास्ते मिलते हैं, लेकिन ये सोचिए कि मान लीजिए हमें सफलता मिल गई और चलते चलते कहीं किसी मार्ग पर कहीं रास्ते में हमें असफलता का सामना करना पड़ा, तो कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। फिल्म का नाम और नायिका कौन है बताइए।

अनामिका फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और इस फिल्म में नजर आती है नायिका के रूप में जया भादुड़ी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से शिष्य श्यामल बनी प्रकृति के सुंदर प्रसन्न सुहाने नजारे को देखकर दिल कहता है रुक जा रे रुक जा। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन पथ पर मेरी बेटी के आगमन ने जीवन सफर की दशा और दिशा बदल दी। उसकी एक मुस्कान में मानो जीवन लक्ष्य छुपा था। आज वो 37 साल की ही कार्यरत है, कल स्वयं ड्राइव कर दूर घुमाने ले गई। मेरी दैनंदिनी जीवन बेटी ही है। वही हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे साथियों ने कहा कि कह रहे हैं कि उन्होंने चलने के महत्व को बताते हुए एक बात लिखी और कहा कि चलते रहना तो जीवन का सफर है। जीवन की तुलना हमेशा बहने वाली नदी से की जाती है। एक नदी अविरल बहती है, समुद्र में लहरें लगातार गतिशील रहती हैं, हवा एक पल के लिए भी नहीं रुकती। प्रकृति का नियम है कि जो ठहर गया उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना, चुनौतियों को पार करना और हर बदलाव को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन है। मनुष्य का जीवन भी कर्म प्रधान है। जीवन के सफर में सुख दुख धूप छांव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम किसी एक पड़ाव पर रुक जाएं तो जीवन का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। हमारे एक और साथी ने बताया कि मैं हर रोज शाम मेरी शॉप के आगे की खुली जगह में वॉक करता हूँ। संडे की शाम मेरे घर के पास वॉक करते करते घूम लेता हूँ। वॉकिंग टाइम मेरी जेब में मोबाइल में विविध भारती सेवा के गीत बजते रहते हैं। तो बिल्कुल हम भी आपके साथ यानी कि वॉक कर रहे हैं, उसे भी नोट किया जाना चाहिए। जो भी उस वक्त आपके साथ हैं विविध भारती पर बने हुए, उन्होंने भी आपके साथ वॉक की है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। और हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई यूं ही कोई मिल गया था सरी राह चलते चलते। बहुत बार कुछ अनजान लोग चलते चलते मिल जाते हैं, उनके साथ चलना भी बड़ा सुखद होता है, ये जानते हुए कि शायद दोबारा फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी। राह चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनका जो साथ रहता है वो हमेशा याद रहता है और दिल से उनके लिए शुभकामना भी निकलती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कई बार वॉक करने जब हम जाते हैं तो भी बहुत से लोगों से हमारी पहचान होती है, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, तो उनके पास जाकर कैसा लगता है आपको? कभी कभी तो हम वॉक करने के बाद बैठकर कुछ देर बात भी करने लगते हैं और वक्त यूं गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाकर आपका वक्त यूं ही गुजर जाता है? हमें बताइए। और साथ ये भी बताइए कि जो गीत अब सुनवाने वाले हैं वो किसने लिखा है।

नीला आकाश फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे, जो जवाब हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही दिया। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, मंजिल मिले या ना मिले हर कदम हमें कुछ नया सिखा जाती है। रास्ते बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जो मुस्कुराते हुए चलता रहता है वही जिंदगी के हर सफर को यादगार बना लेता है। जिंदगी ठहरने से नहीं, चलते रहने से महकती है। हर नया कदम एक नई उम्मीद लेकर आता है और हर सफर हमें अपने बारे में कुछ ना कुछ बताता है। वही हमारे साथी ने बताया कि मेरी बेटी ने थोड़ी देर से चलना सीखा था, क्योंकि वो एक भरे पूरे परिवार में पली बड़ी है, इसलिए सब उसे दिन भर गोद में ही लिए रहते थे। फिर जब मेरे पापा उसके लिए एक तीन पहियों वाली गाड़ी लेकर आए, तब उसने चलना सीखा। उस यादगार दिन की तस्वीर आज भी मेरे पास है। वहीं हमारे साथी ने भी कथा ये याद किया कि हम जब छोटे थे तो लकड़ी की तीन पहियों वाली गाड़ी होती थी, एक खरीद ली जाती थी तो कई बच्चों के काम आती थी, बाद में तरह तरह के रंग बिरंगे वॉकर आने लगे। जिंदगी किसी मंजिल का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है, ऐसा हमारे साथी का कहना है, और हर कदम हमें एक नई कहानी से मिलवाता है, हर मोड़ कोई नया एहसास दे जाता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निरंतर चलते रहना ही जीवन की रीत है, चलते हुए ही जिंदगी में अनेक मोड़ आते हैं जहां से जिंदगी का फलसफा बदल जाता है। चलते हुए जीवन के सफर में अनेक साथी मिलते हैं जो जिंदगी भर याद करते हैं या जिंदगी भर याद रहते हैं। और हमारे साथी ने बहुत से गीत लिखे हैं जिनमें से कुछ गीत तो शामिल हो गए हैं। हमारी कौर साथी कहती हैं कि जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत सफर है जहां हर कदम हमें किसी नई मंजिल, नए रिश्ते और नए अनुभव की ओर ले जाता है। कभी चलते चलते कोई अपना मिल जाता है तो कभी वक्त हमें जीवन के अनमोल सबक सिखा देता है। राहें बदलती रहती हैं, मोड़ आते रहते हैं, लेकिन जो मुसाफिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है वही जीवन की असली खूबसूरती को महसूस कर पाता है। हर मुलाकात एक नई याद बन जाती है और हर सफर दिल में एक नई धुन छोड़ जाता है। इसलिए जीवन का संदेश यही है कि रुकना नहीं, चलते रहना है, क्योंकि मंजिल से अधिक खूबसूरत वो सफर होता है जो हर पल हमें कुछ सिखाता है। तो चलते तो रहना है, चलते चलते हमारे पांव की खूबसूरती देखना भी बहुत ज़रूरत है, खूबसूरती से ज़्यादा मजबूती। तो किस तरह से मजबूत बनाते हैं आप अपने पैरों को, चलते चलते तो बनाते ही हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए किस तरह के जूते

चप्पल आप लेते हैं ये बताइए। कभी कभी हम बहुत ही सुंदर दिखने वाले चप्पल जूते ले लेते हैं और उससे पाँवों में होती है तकलीफ। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का है।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना और चलते रहने की बातें हो रही हैं आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में, क्योंकि चलना ही जिंदगी है ऐसा हमारे साथियों का भी मानना है। और हमारे साथियों से हमने ये भी पूछा था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर या जिसके साथ थोड़ी देर बैठकर आपको वक्त का पता ही नहीं चलता और ऐसा लगता है कि भाई ये वक्त कहाँ चला गया। तो इस तरह के लोगों की बातें हमारे साथियों ने कही है। हमारी एक साथी कहती है, एक बड़ा ही प्यारा दोस्त जिसके साथ बात भले ही ना हो पर उसका साथ हमेशा साथ रहता है, मानो वो हमसे हर समय बात कर रहा हो। प्यारा सा एहसास ही इतना प्यारा होता है कि मानो वो हमारे आसपास ही है, और कभी कभी उसकी बातें इतनी अपनी सी होती हैं मानो वो हमारी ही बात कह रहा हो। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि जिंदगी का सफर यूं ही नहीं कट जाने वाला, हम सफर साथ हो तो रास्ते यूं ही कट जाते हैं। बहुत से मित्र छूट गए, कुछ राह बदल गए, सफर ये VBS के साथ सुहाना हो गया है। वहीं हमारे एक और साथी ने बताया कि कॉलेज के लास्ट ईयर में एग्जाम के बाद हमें सभी दोस्तों से बिछड़ने पर ऐसी ही इच्छा हुई थी कि काश ये समय और हम यहीं रुक जाएं, पर ऐसा संभव कहां, जीवन तो बहता पानी है, चलता रहता है। आज भी उन सबसे टच में है, कभी कभी मिलना जुलना हो जाता है। मोबाइल के आविष्कार को शत शत नमन की बातचीत होती रहती है। वाकई मोबाइल के जरिए तो हम अपने साथियों से सबसे मिल लेते हैं और बातें कर लेते हैं, कितना ही अच्छा ये वक्त होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई साथ बैठा है बातें कर रहा है तो वो ना जाए, कुछ देर के लिए रुक जाए, और ऐसे में हम उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश भी करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप किस व्यक्ति के साथ कुछ और देर बिताना चाहते हैं और उसे रोकना चाहते हैं?

लिखते हैं और उसे आवाज़ देते हैं, कौन सा गीत गाते हैं उस वक्त, ये भी हमें बताइएगा। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम लोग सोमनाथ और द्वारिकापुरी की यात्रा पर गए थे तो हमारे साथ के लोगों से 7 दिन में इतना मेल मिलाप हो गया थी, यात्रा के बाद अलग होते समय बहुत दुख हो रहा था, करीब 80 लोग थे। तो ये भी एक तरीका होता है जब हम अलग अलग सफ़र के दौरान मिलते हैं, लेकिन इन दिनों तो आपस में बने रहना, आपस में मिलते जुलते रहना, बातें करना आसान है। हमारे एक और साथी कहने की अगर उत्तरदायित्व का बोझ है और राह में किसी खास व्यक्ति से सफर बाधित हो रहा है तो समझौता कर जाएं, त्वरित फैसले से नुकसान हो सकता है। हमारे एक और साथी को कछुए की याद आ गई, कछुआ और खरगोश की वो जो कहानियां हैं उससे उन्हें याद आ गया कि कछुआ निरंतर चलता रहता है और अंत में उसकी जीत होती है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को रोकना चाहते हैं ज़्यादा देर और चाहते हैं कि कुछ पल ऐसा निकले जिसमें समय ना बीते और बातें चलती रहें, तो हमें बताइए कौन है वैसा व्यक्ति और ये भी बताइए कि किसकी आवाज़ में ये गीत सुनवा रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाज में आपने सुना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। और हमने अपने साथियों से बहुत सी, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई इसमें तो रुकने की बात है, चलने की बात कहाँ है, लेकिन रुका कितनी अच्छी तरह से जा रहा है ये तो देखिए। और हमारी इबारत में रुकने वाला शब्द भी तो शामिल है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ताजमहल को देखने के लिए बहुत चलना पड़ता है। ताजमहल फिल्म का ये गीत सुनकर उन्हें याद आया है। तो हम ये बताएं कि बहुत से जो ऐसे स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनको देखने के लिए बहुत चलना ही पड़ता है। और जब भी हम सखी सहेलियाँ किसी कार्यक्रम में इसकी जानकारी देते हैं तो आपको बताते ही हैं कि एक आरामदायक फुटवेयर आप साथ में लेकर जाएं, क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं चले गए घूमने के लिए और आपको इतना ज़्यादा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं था और किसी तरह से आप चल के जाकर देखने के लिए गए किसी नज़ारे को या किसी दर्शनीय स्थल को, और आपको बहुत आनंद आया और ऐसा लगा कि चलना हमारा सार्थक हो गया। या कभी ऐसा हुआ है कि आप चले ही नहीं और उस जगह की सैर ही नहीं की, तो दोनों बातें हुई हों तो हमें उसे साझा कीजिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जूते अब हमारे शौक के अधीन नहीं है, उम्र के उत्तरार्ध में पापा ये पहनो ये वाला अच्छा लगता है कि उनकी मर्जी से शासित होते हैं। जितनी खर्च पोशाकों में उम्र भर की होंगी उतनी बच्चे मेरे लिए दो जोड़ी जूते पर कर देते हैं। भाई बड़े ही खुश नसीब हैं आप, ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि जूते और चप्पल अपने पैरों को फिटाएं, ऐसे लेने चाहिए, छोटी हाइट वाले हील लेने चाहिए जो चलने में दिक्कत ना हो। तो ऊँचे लोग टेपर हील वाले पसंद करते क्योंकि हाइट ज़्यादा ना दिखाई दे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन हील वाले जूते लेने के लिए कह रहे हैं, मतलब छोटी हाइट जिनके उन्हें हील वाले जूते ले लेने चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे कभी भी जीवन का या किसी समस्या का या बच्चों के विषय में कोई फैसला लेना होता है तो अपनी धर्मपत्नी के पास बैठता हूं, सारी बात समझाता हूं और साथ में दोनों अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अगर धर्मपत्नी कोई सही सुझाव देती है तो मैं यही कहता हूं कि आपके बिना मैं अधूरा हूं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे लाइट वेट जो जूते होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि सुबह 3 किलोमीटर पैदल घूमने जाते हैं और आते हैं, शाम को साइकिल में भी इतना ही घूम आते हैं। भाई हमारे श्रोताओं की सेहत का राज तो आज खुल रहा है क्योंकि वो बता रहे हैं कि कितनी वॉक कौन कर रहा है और सारे के सारे श्रोता वॉक करने पर जा रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई दौड़ने जा रहा है। भाई वाह, हमें तो आपसे सीख लेनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल वॉक करने से ही बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई है, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में जान पहचान नहीं है, लेकिन हम टहलने के बाद कुछ देर बैठकर खाना बनाना, फल सब्जियों के भाव, घुटनों और पैर के दर्द के बारे में और भी कुछ बातें करते हैं, हंसते हैं, फिर ताजी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ अपने अपने घर को लौट आते हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि जब इस दर्द की बातें होती होंगी तो उसकी दवा भी समझ में आती होगी, बहुत से लोग सुझाव भी देते होंगे। हमारे एक और साथी का कहना है कि सुबह की वॉक सिर्फ सेहत ही नहीं, नए रिश्तों और नई मुस्कानों का भी जरिया बन जाती है। राह चलते जब नए लोग मिलते हैं तो कुछ पल की बातचीत भी दिन को खुशनुमा बना देती है। कभी कभी अनजान चेहरे भी जीवन में अपनापन और नई सकारात्मक ऊर्जा भर जाते हैं। एक और साथी का कहना है कि मैं प्रतिदिन सुबह 1 से 1.5 घंटे तक हमारी क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। खेल पूरा होने के बाद हमारी टीम के कुछ खिलाड़ी रुकते हैं तो उनके साथ बातें करते करते वक्त कहाँ कट जाता है पता नहीं चलता। तो इस तरह से हमारे सभी साथी खेल से या फिर वॉक से सेहत से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और आप हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि भाई समय तो बीतता ही जाता है और सही समय पर किया गया सही काम भी काम आता है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि सही काम ये है कि एक गीत सुनवा देते हैं। बताइए किसकी आवाज़ में गीत है।

गोलमाल फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आपने आवाज़ बिल्कुल सही पहचानी। हमारे एक साथी ने बताया कि माँ शारदा शक्तिपीठ मेहर गया था, वहाँ पर लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया था। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक साइकिलिंग से शुरू करते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। अब रिटायर बैंकर हैं, 69 ईयर के हैं और उन्हें हमेशा अच्छा लगता है ये करना। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उन्होंने 6000 स्टेप का एक बंधन रखा हुआ है। हमारे और साथी जो हैं वो भी बता रहे हैं सब अपनी अपनी व्यायाम की बातें करने लगे हैं अब तो। ऐसा हमें लगा कि भाई आप इतनी अच्छे से चलते फिरते रहते हैं और वॉक करते हैं, योग करते हैं, ये सारी बातें हमारे साथी बताने लगे और स्वस्थ रहने के नुस्खे भी अब आने लगे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि आपका जीवन इतना आनंदमय कैसे रहता है, किस तरह से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब आप चलते हैं, जाते हैं, कहीं घूम फिर कर आते हैं तो आपके मन में भी एक अलग सी ऊर्जा रहती है, अलग सी सकारात्मकता रहती है जो हमें आपके कमेंट्स के जरिए मिलती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चलते चलते जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। कुछ लगे लोग राह में मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ याद बनकर दिल में बस जाते हैं। सफ़र चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हर मोड़ पर कोई ना कोई एहसास हमारा हम सफ़र बन जाता है। वैसे हमारे एक साथी का कहना है कि भाई मैं तो सारे दिन चलती रहती हूँ और घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, रेडियो में गाने चलते रहते हैं और मेरा हाथ बराबर चलता रहता है, कुछ भी करते हुए उनका हाथ काम में लगा रहता है। हमारे एक साथी ने बताया कि मेरी बेटी पूना में पढ़ रही थी,

जाते ट्रेन में एक लड़के से उसकी मुलाकात हो गई, हम लोगों को बताया भी, वो अक्सर यूं ही ट्रेन में मिलते रहते और उन दोनों ने शादी करने का निश्चय कर लिया। हम लोगों के लाख विरोध के बाद भी शादी हो गई और दामाद बहुत ही अच्छा और शरीफ है। तो इस तरह से जो ट्रेन में हम सफ़र मिला वो जीवन में हम सफ़र बन गया, बहुत ही अच्छी बात। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 5 अधिकतम 8 किलोमीटर वॉक करते हैं, सुबह 5:30

साथी कह रहा था कि वापस ही नहीं आना है, वहीं रुक जाएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में हाई हील सैंडल किस उम्र तक पहननी चाहिए महिलाओं को। भाई ये सवाल तो किसी भी महिला के लिए पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिसकी जितनी भी श्रद्धा भक्ति हो कह सकते हैं, या कहें कि जिसके पैर जितनी इजाज़त दें, जो अपने पैरों को अच्छी तरह से संभाल सकें, वो उम्र का तो कोई इसमें सीमा रही नहीं, आप अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। वहीं हमारे साथी ने कहा कि मैंने ताजमहल 15 बार देखा है, तो अब तो आपको पूरा याद हो गया होगा ताजमहल की कहाँ जाने से क्या क्या होता है। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी बड़ी अजीब है, मंजिल का लालच देती है और सारी उम्र इंसान को सफ़र में रखती है। हमारी और साथी कह रहे कि गुरुजी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ के वातावरण में ऐसी शक्ति होती है कि कुछ देर वापस लौटने का मन नहीं करता। एक साथी ने कहा कि उन्हें एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, और आपने पूछा कि किसी के साथ रहने से अगर वक्त ठहर जाए तो गाना जब भी आता है तो मुझे मेरे पतिदेव जो इस दुनिया में नहीं है उनकी याद आती है, और मेरे लिए वो ये गाना हमेशा गाते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस गीत के जरिए उनकी याद एक बार फिर हमने दिलाई। हमारे और साथी कह रहे कि नाना नानी जब आते थे कुछ दिन रुकते थे, और फिर जब वो जाने लगते तो हम बच्चे रोते थे, अगले दिन जब हम लोग स्कूल जाते तब वो चुपके से जाते थे। अच्छा ये बताइए कि नाना नानी के जाने से तो ऑलमोस्ट सभी रोया करते थे, क्योंकि साथ में जाने का मन करता या एक अलग ही प्रेम जो मिलता था, लेकिन ये बताइए कि स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे, स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे और नहीं जाने के लिए कितने लोग रोते थे, ये बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, हमें बताइए किसने लिखा ये गीत।

घर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे गुलजार के बोल, और यही हमारे सवाल का सही जवाब जो आपने भी दिया। हमारे एक साथी कह रहे कि मेरे बचपन से हसरत थी कि गोलकुंडा हैदराबाद का किला देखूं और वो इच्छा पूरी हुई। वहां पर पहाड़ बहुत ऊंचा था, उस पर चलना आसान नहीं था, लेकिन मैं गया और प्राचीन कला को देख कर आनंद आया। वही हमारे एक साथी का कहना कि 11 गीत की लिखी हुई इबारत में से 9वां और 11वें नंबर पर लिखा गीत शामिल हुआ। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्कूल जाना बड़ा ही अच्छा लगता था, नहीं रोए कभी भी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सरल सरल सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हार्ड सवाल पूछें, सरल सवाल में इतना मज़ा नहीं आता। तो बिल्कुल आप बताइए कि कौन सा मुश्किल सवाल होना चाहिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार जब हम सब छोटे थे तब राजस्थान मामा जी के विवाह में कार्यक्रम में गए थे, तब माता चौमुंडा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर इतना ऊँचा है कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बड़े बूढ़े तो थक गए थे, हम बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। एक और साथी कहती हैं कि मैं रोज स्कूल जाती थी, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फुल अटेंडेंस होती थी मेरी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में तकलीफ होने के बावजूद डॉक्टर चलते रहने की सलाह देते हैं, एक लोहे की मशीन अगर बहुत दिन तक चलाई न जाए तो उसमें जंग लग सकती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य रुक गया तो धीरे धीरे पैर की हड्डियां जाम होने लगती है, इससे थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही सलाह आपने दी। हमारे एक और साथी कहने की उनकी बचपन से हसरत थी घूमने जाने की, ये तो हमने पढ़ ली। हमारे एक और साथी कहने की मसूरी यात्रा के दौरान मैंने लैंडोर तक करीब 11 किलोमीटर के पैदल चढ़ाई की। जब मैं वहां लैंडोर बैक हाउस पहुंची तो उसके मशहूर केक और पेस्ट्री खाए और स्वाद आज तक मुंह में बसा हुआ है। एक और साथी कहने कि मैंने मेरी दीदी की छोटी सी लड़की को बहुत चलाया जब वो 1-2 साल की थी। हमने किसके चलना सिखाया, हमारे चलते बोलते रहने की तब की गुरु तब माँ ही थी। माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जब बच्चे अचानक उठने की कोशिश करने लगते हैं तो माँ को ये समझ में आ जाता है कि वो चलना चाहते हैं और धीरे धीरे वो उन्हें पकड़कर चलना सिखा देती हैं। एक साथी कह रहे हैं कि समय और बादल के अलावा कोई ईमानदारी से नहीं चलता। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम जीवन और उसके अंतर हमें निरंतर सक्रिय रहने, चलने फिरते रहना जरूरी है। वैसे तो चलते चलते रहने के बहुत से गीत हैं, कुछ याद आ रहे हैं, इन्होंने गीतों के नाम लिख भेजे हैं, हमें पूरी उम्मीद है उसमें से कुछ गीत तो शामिल हो ही गए। अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत, किसकी आवाज़।

चलते चलते फिल्म से किशोर कुमार को आप सुन रहे थे और हम अलविदा नहीं कह रहे हैं, हालांकि वक्त हो गया है, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर तो रहता है आपके साथ दिन रात लगातार। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

0: connected on Mumbai-Pune expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
3: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवा

0: सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु

0: रथ यात्रा का पावन पर्व है उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
2: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री

0: अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: कार्यक्रम सदाबहार नगमे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

किशोर कुमार की आवाज में फंटूश फिल्म का गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बंदनी फिल्म के इस गीत में संगीत सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

पारस मणि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं हाफ टिकट फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: वो गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय

0: की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट, पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना, ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

हमसे गीत आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको अंतिम गीत सुनवाते हैं, शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की आवाजें। ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत सुनिए, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गीत के साथ नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: ಹೇಳಿ. कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और मंजरी आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार.
1: तो दीपा तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को भीगा भीगा सा नमस्कार. जहां पर गर्मी पड़ रही है वहां पर हम कहेंगे कि मेरी आवाज से, दीपा की आवाज से और हमारे जो सखी सहेली में गाने बजेंगे उसको मिला करके एक भीना भीना सा प्यारा प्यारा सा नमस्कार.
0: बिल्कुल. और यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है साथियों कि ऐसा लग रहा है कुछ हिस्सा इस बरसात का वहाँ चला जाए जहाँ अब तक बरखा रानी बरसी नहीं.
1: बिल्कुल है ना, जरूरी है सब जगह बैलेंस होता रहे बरसात का तो ज़्यादा ठीक है
0: जी.
1: क्योंकि यहाँ और पर तो लग रहा है बस अब रुक जाओ थोड़े दिन, सांस ले लें दो हमको, थोड़ा धूप हमें भी दे दो. ऐसी हाल
0: कुछ ऐसा ही हाल है. और इस बदलते मौसम में हम आशा करते हैं आप सब अपना बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे. तो आप अपने परिवार का और अपना सभी का स्वास्थ्य का खूब अच्छा ध्यान रखिए.
1: बिल्कुल. और चलो दीपा हम बता देते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन. सबसे पहले तो खान पान की बात, क्योंकि दीपा आ गई, मंजरी आ गई है तो कुछ ना कुछ
0: कैसे
1: तो बने
0: नहीं हो कि बातें भोजन पान की होगी.
1: होगी बिल्कुल, क्योंकि पंजाबी छोले आजकल हम लोग बताने वाले हैं और भटूरे साथ में, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका. तो मेरे ख्याल से सबके लग रहा है सबको स्वाद आ रहा होगा छोले भटूरों का, है ना,
0: शायद आ रहा होगा. और ये देखिए ना, इस मौसम में ऐसी कुछ चीजें चटपटी और कुछ तली भुनी चीजों का को हम उसका आनंद ले सकते हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो बिल्कुल लेना भी चाहिए,
1: लेना भी चाहिए. और अब हम बात उसके लिए बात करेंगे. अगला विषय मेरा है वन महोत्सव, तो जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. और आज है कथा सुधा
0: जी
1: में कहानी का दिन है. तो आज दीपा कौन सी कहानी हम लेकर आए हैं?
0: आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बहनें, इस कहानी का हम सुनेंगे भाग एक
1: जी.
0: और फिर देखो महीने की ये शुरुआत है, शुरुआत के महीने में तो ऐसा होता है ना, जब सैलरी आती है या व्यापार में अगर आप हैं तो जो भी एक नियत आप पैसे जो घर पे लेके आते हैं, तो शुरुआत में तो जिसको सैलरी आपको देनी है दे देते हैं, घर में जो आपके काम करते हैं, जो मदद करते हैं उनको दे देते हैं, स्कूल की फीस वगैरह चली जाती है. उसके बाद 15 तारीख से ही फिर ऐसा लगता है खिंचातानी से कुछ शुरू होने लगी
1: है कि भाई अब

0: में बजट बनाए, खर्चा
1: क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
0: बिल्कुल कोई कुछ कहता तो नहीं भाई अभी रुक जाओ अभी नहीं,
1: सही बात।
0: बचत करने के बारे में हम सभी सोचते हैं और महिलाएं खासकर सोचती हैं, हालांकि थोड़ा वो खर्चा भी थोड़ा करती है मनमर्जी की, लेकिन बचत के प्रति वो जागरूक भी रहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखो मौसम को हम लोग थोड़ा सब जगह भेज देते हैं गीतों के द्वारा, तो सभी सखियों और सखाओं को सुनाते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी तो सावन आया नहीं है, लेकिन हम उसे पुकार रहे हैं कि आए। लेकिन फिलहाल आषाढ़ के महीने में ये जो बरसात है हर जगह पहुंचे, हमारी तो यही शुभकामना है।
1: क्योंकि हरियाली छा जाती है, तो हरियाली छाते बस सावन याद आने लग जाता है, और सावन का मतलब होता है कि बस अब हाथों में मेहंदी लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, हरी हरी चूड़ियां पहनेंगे,
0: सब होगा, सब होगा मंजरी। लेकिन पहले चलो सुन लेते हैं कहानी,
1: कथा सुधा।
2: कथा सुधा

0: किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: हिंदी कथा साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दो बहनें। शीर्षक के अनुरूप कहानी दो बहनों के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। प्रेमचंद ने कहानी के मुख्य पात्र, दोनों बहनों के बाह्य आकार और रूप रंग का वर्णन करने के साथ ही उनके मन का भी सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण किया है। कहानी में प्रवाह है, धन की संपन्नता और विपन्नता के अनुरूप पात्रों का चरित्र चित्रण और पात्रों के चरित्र का विकास बहुत स्वाभाविक रूप में किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श और यथार्थ का अद्भुत समन्वय है। दोनों बहनें और उनके पति जिस मानसिक अवस्था और शैक्षिक स्तर के हैं, उसी के अनुसार शब्दों के प्रयोग, नाटकीयता के गुण और संवाद योजना के कारण कहानी जीवंत हो उठती है। वे यथार्थ का चित्रण करते हुए सदा आदर्श पर दृष्टि रखते हैं, यही इस कहानी में भी परिलक्षित होता है। मुंशी प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा है कि साहित्यकार को मानवीय स्वभाव की उज्ज्वलताओं को दिखाने वाला होना चाहिए, यही इस कहानी का मर्म भी है। भाव और पात्र के अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग इस कहानी की विशेषता है। अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है दो बहनें। इसमें प्रेरणा देने की शक्ति के साथ साथ पाठक को चिंतन में लीन करने की भी अद्भुत क्षमता है। तो आइए सुनते हैं कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज इस कहानी की पहली कड़ी।
2: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। दो साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूरत में कुछ ज्यादा तगयुर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू और उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और हुस्न उसने कहां छुपा रखा था।
3: नहीं नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है, ये हुस्न नहीं महज दीदा जेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़े ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं मगर ये कशिश और किसी में नहीं।
2: कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी, उसे चमकाने के लिए जितना साइकिल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है, उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन उस मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे, यहां कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो जरूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद व खाल बेऐब हैं, मगर वो ताजगी में, वो शगुफ्तगी, वो नजर फरेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उससे खुले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती।
3: ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए बस। आंखें रख कर भी

0: बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए, अब इन हेमकों को कौन समझाए। से राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे, वो शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो भी बहुत दिल शिकन थे। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। अब अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बनठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के, दर्जियों के और बजाज के तकाजे सहेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकें। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। इसको तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूं ये बेशर्म जो है,
1: उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है, खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बददुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
0: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है, मैं तो अच्छे अच्छे MA पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। और तेरा शौहर अब BA में होगा? हा?
2: नहीं, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या, एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे होदे पर है तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिमी है ना?
0: वो तो है भाई।
2: 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं और उसमें 100 रुपए मुझे मिल जाते हैं, 250 में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। अब MA पास करके भला क्या करते।
1: रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमजगी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें 1/4 से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है, अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आ

0: आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तमस्खुर के अंदाज से पूछा,
1: जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? भला बताओ जरा, हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं?
0: रामदुलारी बहन की खिफत का मजा उठाते हुए बोली,
2: बहन तुम यहां गलती कर रही हो, एमए तो सभी पास हो सकते हैं।
1: अच्छा,
2: मगर एजेंटी करना किसको आता है भला? ये तो बहुत हुनर का काम है, कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है, अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा देना कि इससे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है।
1: वो तो है भाई,
2: एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है, बड़े बड़े राजाओं और रईसों की ताली कल्ब भी करनी पड़ती है, औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी ना पड़े, और किसी तरह पहुंच जाए तो जवान ना निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर है मगर, अगले साल तरक्की भी होने वाली है।
1: सही कहती हो।
0: रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है।
1: जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती? ये कहां का इंसाफ है कि मैं जो हसीन हूं, तमीजदार हूं, किफायत शियार हूं, अपने शौहर पर जान देती हूं, बच्चों को जान से अजीज समझती हूं, इस खस्ता हाली में बसर हो रही है मेरे, और ये बदतमीज तनपरवर चंचल छोकरी रानी बन गई है। लेकिन कुछ तो उम्मीद है बाकी, शायद मेरी तस्कीन कल्ब का कोई तो रास्ता निकल आए।
0: उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली,
1: तब तो शायद 1,000 मिलने लगे होंगे। हाँ,
2: 1,000 तो नहीं मगर 600 में शुभा नहीं।
1: हाँ, ऐसे ही कोई आँख का अंधा मालिक बन गया होगा।
2: बहन व्यापारी आँख के अंधे नहीं होते। हाँ, जब तुम उन्हें 6,000 कमा कर दो ना, तब कहीं 600 मिले, जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला।
0: तमस्खुर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
1: हाँ, वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है?
2: अरे इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं, अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा, पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता, जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है।
0: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ ले कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है, रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की पहली कड़ी सुनी। आगे यह कहानी

0: क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा सुधा।
1: इस कहानी के भाव में तो हम भी बह गए थे साथियों, आपके साथ
2: बिल्कुल।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बढ़ती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी, IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है
0: दीपा, बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हमारे साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौरी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो है वो नम हो जाया करती थी और कहते मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एंजाइटी टेंशन ये सब चीज़ें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी खत्म हो क्यों जाते हैं, होता है ना ऐसा?
0: बिल्कुल ऐसा होता है। और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाए खर्च करते रहते हैं और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और सखियो, हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वो जरूर बताते चलिएगा।
0: बिल्कुल। और अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल देना है, तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं। यानी कि जब आप सैलरी लेकर आए तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें।
1: इस तरह से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो

0: एक टेंशन सी आ जाती है, वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए ज़रूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांट कर देखना चाहिए, जैसा अभी आप बता रही थी। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 20 का अलग रख दीजिए, और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बनाकर के अलग अलग रख के ये भी करके हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है, ऐसा होता नहीं है और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है, और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती जो हम कटौती करते हैं। और दीपा एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को।
0: बिल्कुल।
1: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं। ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है।
0: बिल्कुल। और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखे ना अलग से, बहुत मुश्किल है। देखिए, बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने के 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या नहीं करें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोलें कि हमें थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, तो आप प्लीज हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
1: और दीपा देखो, पहले के समय में ऐसा होता था ना, महिलाएं जो है दादी नानी काकी लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देते थे, अपनी साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो, शुरू किया जाए। और आप गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और हम अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहां हम सिर्फ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज़ जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये खरीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतज़ार करिए, उसके बाद ही उसे खरीदने की सोचें। देखिए, आवेग में आकर के बहुत चीज हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले महीने ले लेंगे।
1: आदत होती दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता है, मतलब पैसे वाले की, अब कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता है।
0: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना करिएगा,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना, वो हम बिल्कुल
1: शांत हो जाएगा। और जब खरीदने का मन भी करे तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा, हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे ये ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए, कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है, कोई या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं, तो इस ये सब भी आपका, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और देखो हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा, सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे जरूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं।

0: मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, ईएमआई, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है राशन और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयाँ। इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देख कर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
1: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर। हाँ। तो हमारे साथी लिखती हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के ज़माने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज़्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी ज़रूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था, उस डिब्बे में कोई नहीं छूएगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकालकर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं

0: के नाम पर आ रहा है, क्या बात है,
1: क्या बात
0: माँ
1: है?
0: तो माँ ही होती है आखिर, है ना?
1: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में तीन मित्र जरूरी हैं, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र, वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया, क्या बात है। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
0: बिल्कुल। और एक हमारे साथी लिखते कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था, पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर से उड़ जाता था, पैसा पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर देते और भूल जाएं, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख के
1: जी बिल्कुल रखी है। और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
0: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहां की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
1: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं यात्रा में जाते हैं ना।
0: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहाँ पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना,
1: बिल्कुल
0: तो मजा आएगा,
1: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती
0: हैं, कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए, इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने, फलने, फूलने तक का ध्यान रखा जाए, पानी समय पर देना है, उसको कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर KM मुंशी इनके द्वारा हुई थी, तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु, ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती है।
0: बिल्कुल। और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा, जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे, लेकिन सुनते हैं क्या
0: एक गीत।

0: चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मुड़ी।
1: ऐसे ही जो काली काली घटाएं है ना हर जगह हर तरफ बस ये बरखारा नहीं इसी तरह से बाहर बरसा दे यही हम चाहते हैं।
2: बिल्कुल। और हमारे साथ ही लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहाँ पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम जामुन अमरूद नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है, वृक्ष जब लगे होते हैं तो देखो लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियां शहद फल जामुन आंवला बेल आदि मेवे मशरूम बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद लाख राल ये सब चीज़ें इन सब में घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहाँ पर जीव जंतु हैं पशु पक्षी वो सब वहाँ पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
1: बिल्कुल। सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है बहुत सारे रेसिपीज आज अलग अलग तरह से आई है पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़े?
2: कोई भी पढ़ सकता है,
1: पढ़िए आप पढ़िए।
2: चलिए तो हमारे एक साथी लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी, 2 कप काबुली चने रात भर भिगोए हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, 1/2 चम्मच छोला मसाला लेना है इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें, 1 कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूनें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए, अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आँच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी, तलने के लिए तेल लेना है आपको, मैदा सूजी नमक चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें, आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें, छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो और गर्म तेल में मध्यम तेज आँच पर गर्म तेल करें और मध्यम तेज आँच होनी चाहिए और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा तल लें और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं और आप

0: उसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ चूल्हे के संग में परोसे।
1: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।

0: तो साथियों, आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है,
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते हैं। हमारी सखी ने लिखा है, जंगल की जो हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियाँ साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियाँ और जंगली पत्तों पर बैठ कर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है।
0: बिल्कुल, तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना, अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा।
1: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से, तो सभी को मंजरी वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर?
2: स्टूडियो में आकर बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज़्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है। ये आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
2: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
1: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या

0: हार्मोनल
1: पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी, तो इसका बहुत ज़्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है, और ज़्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज़्यादा दिखता है
0: जी।
1: ये जो डिसीज है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये 3 फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और ये 3 फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
0: जी।
1: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है, और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
0: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स हाँ। नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हाँ। हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
1: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना, और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्केंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाना, कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं, और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
0: जी।
1: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चिन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड, वो सब होता है
0: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
1: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस, पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
0: मेडिटेशन,
1: हाँ वो थोड़ा, तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं, 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम, एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है, और डाइट।
0: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
1: अच्छा, एक प्यार का नगमा,
0: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवाने, सुनते हैं ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। पहले जांच पद्धति बताइए,
1: हाँ,
0: किस तरह से
1: तो
0: ट्रीटमेंट
1: जब
0: उसको।
1: इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज़ करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओलेशन स्टडी। कि ओलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, PP, और उसमें कुछ आ गया 120, 110, 120 के आसपास तो HbA1c ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है, इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: और मेल पार्टनर में हम सेमेन काउंट, सेमेन एनालिसिस वो करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी की जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या
1: हाँ,
0: उस
1: वो
0: समय।
1: थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी या IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोस देते हैं, टेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर। और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक ही चीज़ ही टेस्ट रहता है, तो वो सब ठीक है। अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहा है तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
0: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं PCOD और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब PCOD का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इरेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और।
1: यूटेराइन फाइब्रॉइड और CSTA जो है, तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज़्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
0: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं।
1: UHG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है,
0: जी तो
1: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको।
0: जी तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है।
1: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट ही देना ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है उसकी।
0: जी तो एक गाना और सुने, आपकी पसंद का कौन सा।
1: अजीब दास्ता,
0: अजीब दास्ता है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए हार्मोनल असंतुलन होता है, तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसमें, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा।
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे, जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली। जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशा,

0: पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन। तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते हैं।
0: 35%।
1: हाँ, तो डाइट में, डाइट ही बहुत ज़रूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में। एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत ज़रूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज़्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800 2000 तक कैलोरीज,
0: जी
1: और बच्चियाँ, लड़कियाँ खाती है 4000 5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है। और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है, पीसीओडी में पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है। और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाई आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शीरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी है,
0: जी
1: जैसे सभी मेथी, पालक ये सब। और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद। पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते, शुगर, मैदा, वाइट जो चीज़ें, राइस जैसे।
0: जी
1: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो। तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन D3 हो
0: जी
1: गया,
0: जी
1: विटामिन
0: जी
1: डी ये
0: और
1: बोलते हैं।
0: विटामिन डी
1: हाँ,
0: धूप से
1: सन,
0: ही मिलता है,
1: हाँ,
0: और
1: सनलाइट, हाँ,
0: आजकल धूप की बहुत कमी है,
1: बहुत कमी है।
0: लोग एयर कंडीशन
1: हाँ,
0: कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता
1: एसी,
0: नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है।
1: हाँ
0: धूप का ही एक गाना है,
1: हाँ
0: एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो
1: हाँ
0: कोई और गाना।
1: नहीं, जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है।
0: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान है।
0: तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं खाना चाहिए, समोसे के ट्रांसफैट के लिए मुश्किल है,
1: ये ट्रांसफैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या करना
1: चाहिए? फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिल जाती है
0: जी,
1: हाँ, तो मतलब फ्रूट्स इंटेक कीजिए।
0: जब अगर शक्कर छोड़े तो फल जरूर खाए।
1: फल जरूर खाए। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ, बिल्कुल गलत है। शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है,
0: मीठा वो भी
1: मीठा, हाँ, हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती है,
0: वो खा सकते हैं,
1: खा सकते हैं।
0: और PCOD जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
1: हाँ, क्रॉनिक,
0: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है?
1: हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिड़चिड़ PCOD के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा होती है PCOD के पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, अनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।

0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं। बताइए कौन सा गाना
1: चलिए,
0: सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के।
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए, इसके बारे में कुछ?
1: अभी जो है टीनेज में आने का जो

0: वो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
1: जल्दी आ जाता
0: हाँ
1: है
0: जल्दी
1: पीरियड।
0: आ गया है हम लोगों में। जब 14 to 16 था, 12th से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज़्यादा डरने की चीज़ है, डरने की चीज़।
1: तो क्या वजह है इसकी?
0: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं, हाँ कोक ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज़ है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
1: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
0: गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
1: क्या समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
0: गर्भाशय रहता, गर्भाशय है, गर्भाशय के साइड में 2 गर्भनलिकाएं रहती है और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 28, 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
1: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशन होता है या दवा?
0: वो सिस्ट तो नेचुरल सिस्ट, मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है।
1: जी, तो उसका कोई खतरा नहीं?
0: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
1: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: सुरमई अखियो,
1: सुरमई अखियो में
0: नन्ना मुन्ना
1: सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप IVF तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा IVF तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जैसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली IVF नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं, नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर IUI का सेटिंग करते हैं। IUI भी नहीं हुआ तो
0: IUI क्या है?
1: IUI है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। IUI जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, अजोस्पर्मिया उसको जो बोलती है, तो डोनर से बोल लेते हैं, लैब में ये सब किया जाता है
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है पेशेंट कौन है, पेशेंट को पता नहीं रहता, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज़्यादा लीगली होता है। और IUI के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं IUI हुआ तो वो फॉर IVF, IVF के तरफ जब जाते हैं तो IVF क्या होता है, तो IVF में ओम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: जो परक्टली
1: हाँ सीरबीज, हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में
0: तो ट्रांसफर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ, पीरियड्स के सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर, फर्स्ट तो इंजेक्शंस मेडिसिंस और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्रीबीज अंडा, और फिर बाद में
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब

0: अंडे रप्चर होते हैं, वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, वो उस समय कैसे, फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है, तकलीफ तो होती है उनको।
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता है?
1: एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है। और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
0: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन IVF जो फेल हो गया वो लास्ट है
0: जी,
1: लास्ट टप्पा है। IVF फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते
0: जी। जी, तो PCOD के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
1: हाँ, होती है। PCOD में पीरियड से ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है। कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है
0: जी,
1: ये भी होता है
0: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी
1: और... हाँ, नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
0: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
1: हो जाती है स्केंट पे,
0: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
1: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मेनोर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
0: तो
1: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
0: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
1: इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
0: क्या कुछ खतरा होता है?
1: हाँ, यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, ओरीज का कैंसर हो सकता है बाद में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा।
0: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे?
1: वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
0: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और कैंसर का डर पैदा होता है, तो ऐसा कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
1: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है
0: जी।
1: कभी कभी ये PCOD की तो सिस्ट पानी जैसे होता है उसका
0: जी।
1: हाँ, कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
0: मतलब पानी
1: सिस्टिक
0: हाँ
1: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है।
0: यूरिन के रास्ते यूरिन पानी आता है ऐसा?
1: हाँ, वो अलग चीज है, यूरिन के रास्ते जो सफेद पानी है तो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है
0: जी। हाँ, तो उसका क्या इलाज है?
1: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है
0: जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये रात भीगी भीगी,
0: ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती है, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर। हाँ। और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जिसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेजर कर देते मशीन से, हेयर लेजर रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
0: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: हाँ, इसका परीक्षण सेल परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है इसका थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए, और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठे जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और ब्रेस्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
0: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मैमोग्राफी।
1: मैमोग्राफी कर,
0: तो
1: मैमोग्राफी, सोनोग्राफी, FNAC, नीडल बायोप्सी।
0: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
1: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
0: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत होता है, तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
1: मेंटल स्ट्रेस,
0: तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
1: उसका डाइट से, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसे, वो इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है, एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए, अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज़ तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, तो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, हॉबीज से कुछ उस पे ध्यान दो।
0: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से।
0: जी, कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
1: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको

0: सीओडी, मेनार्क, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब बाहर निकलने के लिए। पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो सभी अच्छा होता है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक जीवन शैली।
1: डॉक्टर आशालता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। लेकिन उससे पहले ये गुमशुदा सूचना। रीना पत्नी मुकेश कुमार, गांव नगला रोडान, जिला करनाल से 5 मई 2026

ये लापता हैं। इनकी उम्र करीब 35 वर्ष है और इनका हुलिया इस प्रकार से है। रंग सांवला, लंबूतरा चेहरा, पतला शरीर, कद 5 फुट और शरीर पर फीके हरे रंग का सूट सलवार पहने हुए है। इनके बारे में कोई सूचना अगर प्राप्त हो तो कृपया इन नंबरों पर सूचित करें। 8951383006। इसके अतिरिक्त एक फोन नंबर और है, 7056707001119।

एक और सूचना के अनुसार पूजा पुत्री सुनील कुमार गांव सपड़िया थाना उन्नाव यूपी एक से लापता हैं और इनकी उम्र है करीब 17 साल और इनका हुलिया इस प्रकार है। गोल चेहरा रंग सांवला हस्तपुष्ट शरीर दाहिने हाथ की कलाई पर चोट का निशान कद 5 फुट और इनके बारे में अगर आपको कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इन फोन नंबर पर सूचित करें।

अब आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:20 पर कार्यक्रम गीता संदेश के अंतर्गत आज हम आपको सुनाएंगे गीता के 8वें अध्याय से श्लोक संख्या 10 से 14 तक की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी श्री श्यामलाल चूड़ामणि की।

शाम 7:45 पर आप सुन पाएंगे हमारा कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे रात 8 बजे और रात 10 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम चांदनी रातें।

और अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। सबसे पहले गीत जो गीत हम आपको

मीरा साया फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। और श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म चांदनी से, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म चांदनी का गीत अभी आप सुन रहे थे और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोहरा से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।